0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सेटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबेद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। होशियार, खबरदार, कल फिर छुट्टी।
2: हाँ जी, पीर 12 अक्टूबर को कौमी तातील है ना।
1: 1964 के टोक्यो ओलंपिक की 10 अक्टूबर को मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब का दिन 1966 में खेलों का कौमी दिन करार दे दिया गया था। उस वक्त इस दिन को ताइको नोही कहा जाता था
0: और बाद में कानून में तरमीम से 2000 से इसे बदल दिया गया और फिर अक्टूबर का दूसरा पीर खेलों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। फिर इसके बाद एक और तब्दीली हुई 2020 में, जब इस दिन को ताइको नोही से बदलकर स्पोर्ट्स नोही कहा जाने लगा।
2: इसी मुनासबत से अमूमन हर खिजा में कई जापानी स्कूलों में इस दिन खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, जिसे उन्दो काई कहते हैं।
0: खलील साहब, ये उन्दो काई बड़ा ही दिलचस्प इवेंट है। बच्चे तो मश्क करते ही हैं, लेकिन चूंकि रैले रेस और रसाकशी जैसी कुछ गेम्स में वालदैन और बच्चे मिलकर खेलते हैं, तो कई वालदैन भी बड़ी तैयारी करते हैं।
1: अच्छा।
0: हमारे जानने वाले एक साहब कहते थे, बल्कि एक वालिद कहते थे कि नाक की सीध में तो दौड़ लेता हूँ, लेकिन रैले रेस में पूरी ग्राउंड का चक्कर लगाने की उन्हें खास मश्क करना पड़ती है।
2: अच्छा। उन्दोकाई के लिए तलबा की दो टीमें बनाई जाती हैं, अमूमन एक सुर्ख और एक सफेद टीम।
1: हमारे अमले की जापानी रुकन हारूने इनाका बताती हैं कि कुछ इलाकों में तलबा अपने रिवायती इलाकाई रक्स भी करते हैं।
2: और वो कहती हैं कि उनके आबाई इलाके ओकिनावा में आमतौर पर खेलों के दिन तालिब इल्म ओकिनावा का रिवायती रक्स ऐसा पेश करते हैं। ये तलबा के लिए मकामी सकाफत को समझने और फरोग देने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल दुरुस्त। हारूने साहिबा बताती हैं कि जब वो प्राइमरी स्कूल में थीं तो उन्दुकाई के मौके पर पूरा खानदान खेल देखने आता, सब मिलकर घर का बना खसूसी लंच खाया करते थे।
0: हाँ, वो भी जब प्राइमरी स्कूल में थी तब की बात कर रही हैं, और मेरे भी बच्चे अब बड़े हो गए लेकिन ये यादें नाकाबले फरामोश हैं। वाह वाह।
1: वसीमा साहिबा, आप भी खेलती थी?
0: अरे मेरे बच्चे सुर्ख या सफेद जिस रंग की टीम में भी होते, मैं उसकी कामयाबी की मुंतजिर रहती।
2: और सबसे आसान काम लेकिन लंच भी तो बताती होंगी।
0: जी, खाना बनाना और खिलाना ही तो मेरा टैलेंट है।
2: अच्छा, आज ये नई बात पता चली भाई।
1: अरे टैलेंट से याद आया, गुज़िश्ता दिनों मुझे पता चला कि मैं गा भी सकता हूँ।
0: अरे वाह, ये टैलेंट कहाँ से आश्कार हो गया?
1: कराओके जाकर।
2: अरे अलील साहब, हमारे सामीन को जरा सादा अल्फाज में बताइए कि कराओके आखिर है क्या, और आप वहाँ कब और क्यों गए थे?
1: यही बताने वाला हूँ, और ये सिलसिला है
0: जापान जो मैंने देखा।
1: तो हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता दिनों दो साथियों को रुख्सत करने के लिए उनके एजाज में एक अलविदा इशाइया था, लेकिन मुझे वहां पता चला कि जापान में अलविदा कहने का एक दूसरा मरहला भी होता है।
2: दूसरा मरहला यानी दावत के बाद एक और दूसरी दावत?
1: जी बिल्कुल। पहली दावत अमूमन निस्बतन रस्मी सी होती है और इसमें लोगों की तादाद भी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी महफिल में चंद करीबी साथी शामिल होते हैं जो रुख्सत होने वाले दोस्त के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहते हैं।
0: जैसे उस पहली दावत में हम खवातीन आपके साथ थीं, लेकिन दूसरी में हम कहाँ शामिल हुईं? बिल्कुल नहीं।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो हम भी कुछ नौजवान साथियों के साथ हो लिए कि देखते हैं कि आखिर ये कराओके है क्या भला।
0: अरे रात के खाने के बाद प्रोग्राम पता लगा इस पर ना, ये तो पर पता क्या चला कि था क्या।
1: तो मैंने जब पहली बार इसका नाम सुना तो समझा शायद कोई कंसर्ट होगा जहां गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे और हम बैठकर दाद देंगे, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि मामला कुछ उल्टा है। गुलकार कोई और नहीं बल्कि हम खुद थे।
2: अच्छा, लेकिन पहले ये बताइए कि कराओके का मतलब क्या है?
1: अरे सादा अल्फाज में समझें तो ऐसी गायकी जिसमें असल गुलकार की आवाज नहीं होती, सिर्फ मौसीकी चलती है और आप खुद गाते हैं। कराओके जापानी जबान का लफ्ज है जिसका मफहूम तकरीबन खाली आर्केस्ट्रा बनता है। ये तफरी जापान में परवान चढ़ी और बाद में कराओके के कमरों की वजह से बहुत आम हुई।
0: अच्छा अच्छा मैं समझ गई, कराओके में गुलकार की जगह आप खुद ले लेते हैं।
1: बिल्कुल, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा इंकशाफ था।
2: तो जरा बताइए तफसील के साथ के वहाँ पहुँच कर हुआ क्या?
1: भाई हम पांच लोग थे और खैर से बाकी सब जापानी और सिर्फ मैं गैर जापानी।
0: अरे आपने भी जापानी गाने गाए क्या?
1: मैंने तो हिंदी और उर्दू गाने गाए, बल्कि मेरे जापानी दोस्तों ने भी उर्दू गानों में मेरा साथ दिया, उन्हें उर्दू आती है।
0: अरे फिर तो हिसाब बराबर हो गया। वैसे मुझे ये बताइए कि जब आप कराओके पहुंच गए तो फिर क्या हुआ?
1: बिल्कुल, जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुई, फिर पूछा गया कि क्या मशरूब लेंगे। मैंने फ़ौरन कहा खाना पीना तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन बताया गया कि कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना ज़रूरी है।
0: अरे एक जूस तो बनता था ना?
1: जी बिल्कुल। फिर हम लिफ्ट में अपने मखसूस कमरे में पहुँचे, वहाँ एक बड़ी स्क्रीन थी, सामने माइक लगा हुआ था और बाकी लोगों के लिए बैठने की जगह थी, बिल्कुल ड्राइंग रूम की तरह।
2: यानी पाकिस्तान की महफिल मौसीकी की तरह सब बैठ कर किसी एक को सुनते हैं?
1: नहीं नहीं, यही तो असल फ़र्क है। पाकिस्तान में अगर दोस्तों की महफिल हो और किसी को गाने का शौक़ हो तो अमूमन एक शख्स गाता है, बाकी लोग सुनते हैं, दाद देते हैं और फरमाइश करते हैं। कराओके में सुनने वाला ही गाने वाला बन जाता है।
0: यानी हमारे यहाँ जो दोस्त हर गाने की फरमाइश करे उसे यहाँ माइक भी पकड़ा दिया जाता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ सिर्फ फरमाइश नहीं करनी, खुद गाना भी है।
2: लेकिन अगर गाना याद ना हो तो फिर क्या करें?
1: यही तो मजे की बात है, गाने के बोल स्क्रीन पर रोमन में चलते रहते हैं, आप उन्हें देखकर गाते जाते हैं, यहाँ तक कि स्क्रीन से आपको ये भी पता चलता रहता है कि गाना आपने कब शुरू करना है।
0: यानी रियाजत की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हिम्मत चाहिए।
1: हिम्मत और थोड़ा सा एतमाद।
2: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि गाने मुंतखब कैसे करते हैं?
1: भाई गानों की एक पूरी फहरिस्त टैबलेट या कंट्रोल पैनल में मौजूद होती है, जापानी और अंग्रेजी गानों के साथ दूसरे मुल्कों की मौसीकी भी आपको मिल जाती है, हिंदी फिल्मों के कुछ गाने भी मौजूद थे अगरचे जापानी गानों के मुकाबले में काफी कम थे।
0: और पाकिस्तानी गाने?
1: पाकिस्तानी गानों का इंतखाब भी काफी महदूद था, लेकिन दोस्तों ने बताया कि गानों की फहरिस्त में नए गाने शामिल होते रहते हैं।
2: तो आपने आखिर कौन से गाने गाए?
1: मैंने हिंदी गीत गाने की कोशिश की, बल्कि भरपूर कोशिश की।
0: कोशिश सिर्फ कोशिश की या वाकई गुलूकारी का मुजाहिरा कर दिया?
1: ये फैसला तो वहाँ मौजूद सामीन खुद करें भाई।
2: अच्छा खलील साहब ये बताएं कि माहौल कैसा था वहाँ का?
1: भाई गाने का इंतखाब होते ही लाइट मुधम हुई और रंगारंग रोशनियां झल उठी, अचानक ऐसे लगा जैसे हम किसी छोटे कंसर्ट हॉल में मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये था कि स्टेज पर कोई मशहूर गुलकार नहीं बल्कि हम खुद थे।
0: और आपकी महफिल में पांचों लोगों ने गाना गाया?
1: जी जी जी बिल्कुल, हम सब ने बारी बारी अपने फन के जौहर दिखाए, तकरीबन ढाई घंटे ये शौकिया गुलकारी चलती रही। अलबत्ता हमारे एक साथी ने ऐसे भी गाने गाए कि जिनको देख के पता चल रहा था कि भाई वाकई प्रोफेशनल और पेशावराना अंदाज में गाने गा रहे हैं।
2: जापान में कराओके सिर्फ नौजवानों का शौक है क्या?
1: नहीं, मुख्तलिफ उम्र के लोग इससे लुत्फानंदोज होते हैं, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ आप ग्रुप के बजाय अकेले भी कराओके कर सकते हैं, बाज जगहों पर एक शख्स के लिए भी छोटे कमरे बने हुए थे।
0: यानी मेरी तरह आवाज अगर अच्छी ना हो तो शुक्र है सामिन तो कम होंगे।
1: बिल्कुल, और शायद यही इसकी खूबसूरती है, मकसद लाजमन अच्छा गुलकार बनना नहीं बल्कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और तफरीह करना है जिसमें वो सब मिलकर एक गाना गाते हैं।
2: आपने पाकिस्तान में भी महफिल मौसीकी देखी है ना, वहाँ और जापान के कराओके में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या महसूस हुआ?
1: हमारे यहाँ महफिल में अमूमन गुलकार और सामीन अलग अलग होते हैं, कोई अच्छा गाने गाने वाला गाता है और बाकी लोग सुनते हैं, दाद देते हैं और फरमाइश करते हैं, लेकिन कराओके में ये फर्क खत्म हो जाता है, यहाँ आप खुद गुलकार भी हैं और सामे भी।
0: यानी पाकिस्तान में महफिल जमाओ और जापान में कराओके जमाओ।
1: जी जी बिल्कुल ऐसा ही समझ लें।
2: एक और फर्क शायद ये है कि पाकिस्तान में गाना अक्सर किसी खास खुशी के महफिल का हिस्सा बनता है, जबकि जापान में कराओके खुद दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का अमूमी प्रोग्राम बन चुका है।
1: बिल्कुल, आप दोस्तों के साथ जाएं, एक निजी कमरा लें, अपनी पसंद के गाने मुंतखब करें और बारी बारी माइक पकड़ते जाएं, और चूंकि कमरा अलग होता है इसलिए पूरे मोहल्ले को आपकी गायकी सुनना भी जरूरी नहीं।
0: واہ واہ بھائی، ہمارے ہاں تو ممکن ہے شوقیہ فنکار گانا شروع کر دے تو پوری گلی کا سکون چوپٹ.
1: جاپان میں کم از کم میرے تجربے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، شکر ہے.
2: خلیل صاحب، آپ کے لیے اس تجربے کی سب سے دلچسپ بات کیا تھی؟
1: یہ کہ میں نے دریافت کیا کہ گانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیشاور گلوکار ہی ہوں. دوست ہوں، ایک مائک ہو، اسکرین پر بول ہوں اور موسیقی چل رہی ہو، تو ہر شخص جو ہے کم از کم چند منٹ کے لیے گلوکار بن سکتا ہے.
0: ارے واہ، اب یہ بتائیے کہ آپ کی گائیکی سن کر باقی چار لوگوں نے دوبارہ آپ کو بلانے کا فیصلہ کیا یا نہیں؟
1: اس کے لیے تو آپ کو اگلی کراوکے پارٹی کا انتظار کرنا پڑے گا.
2: یعنی جاپان نے ایک اور پاکستانی کو گلوکار بنا دیا.
1: جی، کم از کم کراوکے کے کمرے کی حد تک تو بالکل.
0: واہ کیا خوب منظر کشی کی. سامعین، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کراوکے میں ہم کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے خود گانے گا لیے، خلیل صاحب سن بھی لیے، سنا بھی دیے، لیکن پروگرام کا وقت گزرتا جا رہا ہے، سامعین کو بھی گیت سنوانا ہے.
2: موسم خزاں بھی تو گزرتا جا رہا ہے وسیما، اسی پر گیت سنیں.
0: ارے ہاں، جیسے پاکو ہند میں خلیل صاحب بہار پسندیدہ موسم ہوتا ہے، لیکن جاپان میں تو خزاں کو بھی پسند کیا جاتا ہے،
2: کیونکہ اس کی خصوصیت رنگ بدلتے پتے اور شفاف آسمان جو ہے.
1: ایک اور خصوصیت خزاں کی سبزیاں بھی ہیں.
2: ہارونے صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ خزاں کی سبزیوں کا ذکر ہو تو شکرکندی اور حلوا کدو جیسی موسمی سبزیاں یاد آ جاتی ہیں.
1: ان سبزیوں سے یہاں مٹھائی بھی بنتی ہے، لوگ خزاں میں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں.
0: ارے واہ، جیسے آپ کراوکے سے لطف اندوز ہوئے. ویسے ہارمونی صاحبہ کہتی ہیں ان کے کام کی جگہ پر خزاں میں شکرکندی کے یوکان، یعنی ایک خاص قسم کی جاپانی برفی سمجھ لیں، بکتی ہے اور کئی گاہک ہر سال اس کا انتظار کرتے ہیں.
1: یعنی جاپان میں لوگ خزاں کی سبزیاں صرف پکوان نہیں بلکہ سویٹ ڈش کے طور پر بھی پسند کرتے ہیں.
2: جی، اور آج اسی مناسبت سے گیت سنتے ہیں.
0: اس کا عنوان ہے کریزی پارٹی نائٹ پمپکن نو گیاکوشو. اس کو گلوکارا کیری پامیو پامیو نے گایا ہے.
2: جاپانی پاپ آرٹسٹ کیری پامیو پامیو دلکش فیشن، موسیقی اور منفرد ویڈیوز کے لیے بڑی معروف ہیں.
1: 2011 میں ڈیبیو کے بعد انہوں نے دنیا بھر میں پرفارم کر کے جاپانی پاپ کلچر کا منفرد انداز بین الاقوامی شائقین تک پہنچایا.
0: اور آج ہم جو گیت سنوا رہے ہیں وہ 2015 میں ریلیز ہوا تھا. یہ ہیلوئن سانگ کیری پامیو پامیو کا رنگین اور منفرد انداز اجاگر کرتا ہے.
2: ہارونے چان کے مطابق آٹم ویجیٹیبل اور اسے گانے کے درمیان یہ تعلق ہے کہ خزاں میں سڑکوں پر ہیلوئن کی آرائش ہوتی ہے اور پمپکن اس موسم کی سب سے جانی پہچانی علامتوں میں سے ایک ہے.
1: ہارونے چان کو خزاں، ہیلوئن اور کدو کی یاد دلاتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ گانا خزاں کے تھیم کے لیے منتخب کیا ہے.
0: اس گیت کے بولوں میں ہیلوئن، بھوتوں کے ساتھ رقص اور پارٹی کا ذکر ہے، تو آئیے سنتے ہیں.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिच्चिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिच्चिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और हिंदी भाषी इन्फ्लुएंसर मायू जी से मुलाकात की तीसरी और अंतिम कड़ी।
0: कामायनी जी, देखिए साल के इस समय दुनिया भर के अकादमिक साहित्य जगत में हलचल रहती है ना, एक विशेष पुरस्कार को लेकर।
1: हाँ, साल के इस समय प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होती है
0: जी।
1: और देखिए जापान का खाता भी खुल चुका है।
0: वाकई बेहद खुशी की बात है और हम सभी को यहाँ जापान में गर्व है इस बात का,
1: जबकि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है रिश्ता बस इतना है कि हम जापान में रहते हैं और बहुत अच्छा है
0: वैसे जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनके अगर विषयों पर गौर करें तो समझना बड़ा मुश्किल है ना कि किस तरह का शोध है
1: जी।
0: बड़ा जटिल होता है समझना।
1: हाँ, खासकर विज्ञान से जुड़े विषय समझने में कठिन होते हैं।
0: हाँ, बहरहाल सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। चाहे आम आदमी को इनके विषयों पर ज्यादा जानकारी या समझ ना हो, फिर भी पूरी मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य उजागर करने के शोध कार्य या अनुसंधान में लगे लोगों की बरसों की मेहनत काबिले तारीफ है ना
1: जी। वाला जी, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के एक विजेता जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो की खबर पर कालीचरण स्नेही ने टिप्पणी की है कि इस महत्वपूर्ण गौरव उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई।
0: कालीचरण जी, आपका धन्यवाद। वैसे इनके शोध का विषय भी बहुत ही जटिल है। अमीनो अम्ल के अणुओं की संरचना के बारे में उन्होंने ऐसे राज उजागर किए हैं जिनके बारे में अब तक बिल्कुल भी पता नहीं था।
1: पुरस्कार की घोषणा के बाद इनके विश्वविद्यालय में मीडिया का तांता लग गया इंटरव्यू से लेकर उनकी दिनचर्या तक पर मीडिया ने बात की। जहां जहां जा रहे हैं मीडिया पीछे पीछे चल रहा है
0: टीवी पर देखा कि घोषणा के अगले दिन सुबह सुबह ही उनके विश्वविद्यालय के सामने मीडिया वाले खड़े हो गए थे और प्रोफेसर सोआई पता है साइकिल से पहुंचे और अचानक इतने सारे लोगों को देखकर बिल्कुल ठिठक से गए।
1: क्या करें, है ही इतनी बड़ी खबर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा, अब है किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का पत्र
0: जी।
1: लिखते हैं, दिनांक 4 अक्टूबर को चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत जापानी यूट्यूबर मायो सान से हुई बातचीत के दूसरे भाग के समापन पर आपने कहा था, उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि ये बातचीत मुझे पसंद ही नहीं आई, बल्कि यूं कहूं कि सीधे दिल में उतर गई।
0: अच्छा।
1: हाँ, सच तो ये है कि ऐसी आत्मीय और रोचक बातचीत सुनते हुए मन कभी अघाता ही नहीं। ओहो, मायोसान ने जिस सहजता और आत्मीयता के साथ हिंदी भाषा को अपनाया है उसी गहराई से उन्होंने भारतीय संस्कृति में भी अपनी पैठ बनाई है। ये अनुभव अपने आप में अत्यंत सुखद और विस्मयकारी है। हाँ, इस बातचीत की खूबसूरती को और निखारने में भेंटकर्ता द्वारा पूछे गए सहज सटीक और विषयानुकूल प्रश्नों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रश्न जितने स्वाभाविक और सार्थक थे, बातचीत उतनी ही खुलती और खिलती और निखरती चली गई। एक बेहद आत्मीय, रोचक और मन को छू लेने वाली बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों सहित पूरी टीम का हृदय तल से हार्दिक धन्यवाद। ऐसी प्रस्तुतियां न केवल सुनने में आनंद देती हैं, बल्कि मन में एक सुखद स्मृति भी छोड़ जाती हैं।
0: वाकई सुरेश जी, आपने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है। भाषा सीखना एक अलग बात है, लेकिन किसी संस्कृति में अपने आप को ढाल लेना बिल्कुल ही अलग आयाम है।
1: जी, जी।
0: हिंदी भाषा सीखने वालों की कमी तो नहीं है, लेकिन भारतीय रंग में रंग जाना और भारतीय तौर तरीकों को आत्मसात करना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे में मायो जी ने इतनी कम उम्र में जो हासिल किया है उसका कोई जोड़ नहीं।
1: जी, अब क्योंकि मायो जी भारत में रहती हैं तो मुझे लगता है कि वे और गहराई से भारत को समझ पाएंगी।
0: हाँ, ये तो है।
1: और आगे उनका जीवन क्या मोड़ लेता है और वे किस मुकाम तक जाती हैं, इस पर हमारी भी नजर रहेगी।
0: जी, अब देखिए अगला पत्र है मोहम्मद जहांगीर आलम जी का और लिखते हैं, मैं रेडियो जापान का नियमित और पुराना श्रोता हूँ। मैं समय समय पर आपकी वेबसाइट पर जाता हूँ और कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: जहांगीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं और वेबसाइट सामग्री का भी आनंद ले रहे हैं। अगली बार जरूर बताएं कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है और आपकी रुचि किस में है।
0: जी
1: वायला जी, हमारे पिछले चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में झावेंद्र कुमार ध्रुव ने लिखा है, नाइस। मुरारी साह ने लिखा है, बहुत ही सुंदर। और नवीन शर्मा कहते हैं, वेरी नाइस।
0: अच्छा, और देखिए कामायनी जी, जापान की चिप निर्माता कंपनी रैपिडस सेमीकंडक्टर के विकास कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से 17 घरेलू और विदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है। तो इस खबर पर अशोक डी वाई ने लिखा है कि हम इसके उत्पादों का इंतजार कर रहे हैं, एकाधिकार बाजार में ये ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा है।
1: हाँ अशोक जी, एआई और डेटा सेंटर से जुड़ा कारोबार जैसे जैसे फैल रहा है, उन्नत चिप की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में अगर कई खिलाड़ी मैदान में हो तो ये उपभोक्ता के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे विकल्प मिल सकते हैं।
0: जी हाँ, और रैपिडस जिन विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है उसमें भारत की कंपनी भी है। दरअसल चिप को डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ा काम है और इसको डिजाइन करने वाले इंजीनियरों की संख्या देखिए जापान में कम है, तो इसलिए विदेशों के साथ साझेदारी करके इस क्षेत्र में इंजीनियरों की कमी की भरपाई करने की योजना है।
1: भारतीय कौशल के बिना काम नहीं, क्योंकि आईटी के क्षेत्र में भारतीय कामगारों की संख्या भी बहुत है और उनके कौशल का लोहा तो दुनिया मानती है।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही।
1: अब प्रौद्योगिकी की दुनिया से निकल कर आते हैं ऑटो रिक्शा की ओर।
0: अरे कमायनी जी, आपने तो बहुत बड़ी छलांग लगा दी।
1: दरअसल हाईटेक जापान में देसी ऑटो की सवारी वीडियो पर धान सिंह नेगी ने लिखा है, बहुत सुंदर प्रयास, ऑटो रिक्शा देखकर बहुत खुशी हुई।
0: नेगी जी, आपको वीडियो पसंद आया, इसके लिए शुक्रिया। हमारा आगे भी प्रयास रहेगा इस तरह की रोचक जानकारी आप तक लाने का। और अब देखिए समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हिंदी भाषी जापानी मायो जी से भेंटवार्ता श्रोताओं को बहुत पसंद आ रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: पिछले बार उन्होंने भारतीय फिल्मों के अपने शौक के बारे में बात की थी। उस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं तीसरी और अंतिम कड़ी।
3: आप लगातार इतनी वीडियो बनाती हैं
4: जी,
3: और हर बार एक वीडियो में नया विषय चुनती हैं, तो ये विषय कैसे चुनती है, इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बैकग्राउंड काफी चीज ऐसे नहीं कि उठे और वीडियो बनाने लग गए।
4: जी, ये सोचना बहुत मुश्किल है, कभी कभी तो बहुत सोचना पड़ता है। आजकल मुझे पता चला कि मैंने आज तक 500 वीडियोस बनाए हैं, तो 500 आइडियाज थे, और अभी तो मुझे लगता है कोई और नया आइडिया नहीं है, ये सब खत्म किया मैंने। फिर भी बनाते रहना तो चाहिए। तो एक तो ट्रैवल व्लॉग, तो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, बहुत जगह है जा सकती हूँ और वीडियोस बना सकती हूँ, तो वो तो खत्म नहीं होगा। वैसे जापान में भी है, जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं, हर जगह के ऊपर में वीडियो बना सकती हूँ, या हर तरह के खाने के ऊपर भी मतलब कर तो सकती हूँ। तो ऐसे करके हमेशा ढूंढती रहती हूँ, या तो आजकल ज्यादा डांस करती हूँ, डांस भी खत्म नहीं होता, डांस तो हमेशा नया गाना नया डांस आते रहते हैं, तो वो भी खत्म नहीं होगा। पर फिर भी हमेशा मैं सोचती हूँ कि अरे यार किसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, सोचती रहना चाहिए।
3: तो वीडियो के जरिए आप लोगों को कोई संदेश देना चाहती हैं कि अपने मनोरंजन के लिए? जैसे मुझे याद है आपने कुछ जापान की 5 चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगती उस पर भी बात करी थी, तो कुछ खास ऐसे संदेश होता है आपकी वीडियो में?
4: जी, वीडियो यूट्यूब का मात्रा उद्देश्य ये है कि जापान और भारत का संबंध को और बेहतर बनाना, और उसके लिए मुझे लगता है एक तो एक दूसरे के देश के बारे में अच्छे से ठीक जानकारी होनी चाहिए। वैसे जापानीज लोग आजकल इंडिया मूवीज देखकर इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, और मुझे लगता है भारतीय लोग भी जापान को बहुत पसंद करते हैं। सच्ची बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट्स में तो बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि भारतीय लोगों को भी जापान अच्छा लगता है। फिर भी मुझे लगता है एक दूसरे के देश के अंदर इतनी सही ठीक जानकारी तो नहीं है, कुछ तो मतलब गलत समझते हैं। जैसे जापानीज लोग मूवी के थ्रू इंडिया को जानते हैं, तो मूवी सब पूरा तो सही नहीं है। ऐसे भारतीय लोग या आजकल जवान लोग तो एनीमे देखते हैं, एनीमे की दुनिया तो असली जापान थोड़ी है।
3: जी जी।
4: तो कभी कभी कुछ गलत फहमी है, ऐसा तो है हमेशा, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सुधारने के लिए मैं कोशिश करती हूँ।
3: जी, जैसे खास तौर से लोगों को ये लगता है जापान बहुत महंगा देश है या जापानी भाषा बहुत मुश्किल है, तो इस तरह की भ्रांतियां तो रहती है।
4: जी जी जी। और जापान के ऊपर अच्छी बातें भी मैं करती हूँ, लेकिन बुरी बातें भी करती हूँ। जैसे कि जापान में कुछ मतलब कोई भी चीज है वो सुधारनी चाहिए, ऐसी चीजों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं असली जापान को दिखाना चाहती हूँ, ना कि केवल मतलब सुपरफिशियल अच्छा वाला जापान। तो ऐसे कोशिश तो करती हूँ।
3: बहुत बढ़िया बात कही आपने कि सभी तरह का पहलू दिखाना जरूरी है। तो मायो जी, हम ये कह दें कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी ने मायो का जीवन बदल दिया?
4: ऑफ कोर्स।
3: आपके जीवन में हिंदी का कितना महत्व है?
4: बहुत बड़ा महत्व है। वैसे मैं तो आज तो यूट्यूबर बन गई है, और मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है। पहले तो मतलब मुझे जब मैंने निर्णय लिया था कि हिंदी सीखने के लिए, उसी समय तो मुझे नहीं लगा कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगी, लेकिन हाँ, तो मैं कह सकती हूँ हिंदी एक मेरी आइडेंटिटी है और जिंदगी है, और एक मेरे लिए हिंदी हथियार जैसा
3: हथियार।
4: है हथियार। हाँ, तो आजकल वैसे एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ, और हाँ, मैं जापान से आई हुई हिंदी बोलने वाली इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इसी इंडस्ट्री में जीतने के लिए बाकी भारतीय इन्फ्लुएंसर के साथ भी कम्पीट करना चाहिए, मतलब हाँ ऐसा भी है। तो उसी समय अगर हिंदी ना हो तो हमेशा के लिए ये एक विदेशी है, विदेश से आई हुई है, कुछ अलग है ऐसा, लेकिन हिंदी अगर बोल सकती तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में पकड़ सकती हूँ, या बाकी इन्फ्लुएंसर्स लोगों के साथ

0: भारत में मूवी तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और ऐसा होने की जरूरत नहीं है कि एक मेन कास्ट बन जाऊंगी या बड़ी बड़ी फिल्मों पे काम करूंगी, ऐसा नहीं है। बस छोटी सी मूवी की छोटी सी रोड काफी है, लेकिन एक बार तो फिल्म में थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ, देखते हैं।
1: तो हम भी आशा करते हैं कि आपको जरूर कोई फिल्म में हम देख सके।
0: थैंक यू बाबा, धन्यवाद।
1: और एक बात बताइए कि आपको सुनकर हमारे कई श्रोता अब समझ गए होंगे कि एक नई विदेशी भाषा, विशेष रूप से कुछ ऐसे हमारे श्रोता जो जापानी भाषा सीखने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनके मन में पहला कदम उठाने के लिए खिचक होती है, डर होता है कि कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, कुछ मैसेज कि भाई कैसे भाषा शुरू की जाए और नई भाषा सीखने के क्या क्या फायदे हैं? हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की की तरफ से खास संदेश।
0: ओके, दो तीन चीजें हैं। एक तो भाषा सीखना बहुत मजेदार है। वैसे भाषा सीखने से, भाषा सीखना एक भाषा सीखने की बात नहीं है, इसी देश को जानना या लोगों से बात करना, समझना या तो फिल्म एनिमे कोई भी एंटरटेनमेंट को एंजॉय करना, ये सब फायदा, बहुत फायदे हैं। तो मुझे लगता है भाषा सीखना बहुत मजेदार है और वैसे मुश्किल भी नहीं है। अपना गोल अपना डिसाइड कर सकते हैं। मतलब जापनीज है तो N1 तक पहुंचने की जरूरत नहीं है ना, N5 N4 सीख के अगर मूवी में कुछ कुछ शब्द समझ में आ जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा शायद, और कुछ लोगों से बात भी कर सकेंगे, काम नौकरी का अपॉर्चुनिटी मौका भी होगा। तो ऐसे अपना अपना गोल डिसाइड करके सीख सकते हैं, तो इतना मुश्किल सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि मैं जापानीज बोलती हूँ ना, और मेरे लिए हिंदी सीखना बहुत आसान था, मतलब मुश्किल भी है लेकिन जापान और हिंदी बहुत मिलती जुलती है, इसलिए सीखना रिलेटिवली आसान है। देखिए अगर थोड़ा ऊंची लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो हिंदी में तो संस्कृत भी है, उर्दू भी है, बहुत अलग अलग शब्द है, तो मुश्किल है। लेकिन इन जनरल वो जो वाक्य का स्ट्रक्चर हिंदी और जापानीज बहुत मिलती जुलती है तो बहुत आसान माना जाता है।
1: व्याकरण काफी मिलता जुलता, हाँ,
0: है ना,
1: और शब्दों का उच्चारण भी काफी मिलता जुलता है।
0: तो ये भारतीय लोगों के लिए भी जापानी सीखना इतना मुश्किल नहीं है इन जनरल। तो जरूर शुरू कीजिए, ट्राई कीजिए।
1: आखिर में आपकी वो फेवरेट लाइन सुनते हैं।
0: ठीक है, नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम है, कैसे है? तो शुरू करें, अभी तो खत्म होने वाला है लेकिन मैंने शुरू करें बोल दिया। और दूसरी बात मैं बता सकती हूँ?
1: जरूर।
0: आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो या ये रेडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और NHK वर्ल्ड जापान को भी फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे।
1: तो मायो जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों कैसी लगी ये भेंट वार्ता? श्रोताओं आपके लिए एक खुशखबरी है कि हम मायो जी को फिर से आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। इंतजार करें, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें जरूर लिखें, हम आपके सवाल मायो जी से जरूर पूछेंगे।
3: और कमानी जी, हम भी कुछ अपने सवाल लिख लें कि हम क्या पूछेंगे,
2: हम क्या पूछेंगे जी, जी, जी।
3: हम ये जानना चाहते हैं कि इतने प्रसिद्ध और लोकप्रिय होने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
2: जी, जी, जी।
3: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आप हमें अपने प्रश्न जरूर भेजेंगे, और अब देखिए समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, आपके पत्रों की प्रतीक्षा में फिर होगी मुलाकात, तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
2: और कामायनी सिंह को, सायोनारा, नमस्कार।